0: कोई तस्वीर कर सकते हैं कि उसका बेटा अंगारों का मुंह में डाले? अब देख सकते हैं, कोई कोई अपने आंख से देख सकता है, अगर अंगारा हाथ में उठाते या कोई गर्म चीज स्त्री की तरफ जाते कैसे दौड़ते हम उसे बचाने के लिए। लेकिन क्या कयामत के दिन हमारे बच्चों के मुंह के अंदर ये जकूम का खाना हो, ये आग हो, क्या हम ये देख सकते हैं, ये तस्वीर कर सकते हैं, ये सोच भी सकते हैं? तो अल्लाह तआला से डरना चाहिए। सख्ती की एक और सूरत, खादिमों पर सख्ती करना, खादिमों पर बेजा सख्ती होती है, खादिमों को मारते हैं, नौकरों को मारते हैं, हाथ उठाते हैं, जुल्म करते हैं, तनख्वाह वक्त पे नहीं देते, मशीनों की तरह काम करवाते हैं उनसे। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक देखिए, सैयद अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की है, 10 साल, एक मरतबा भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ये काम ऐसे नहीं वैसा करना चाहिए था। अरे गलती नहीं, 8 साल की उम्र थी जब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में गए, और 18 साल की उम्र में, जब उनकी उम्र 18 साल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात हुए, तो 8 साल के बच्चे गलती नहीं करते क्या? लेकिन नरमी देखी। और फरमाते हैं आप से आयशा फरमाती है कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी खादिम को नहीं मारा, ना कभी किसी बीवी को, ना कभी किसी को मारा है, कभी किसी को नहीं मारा। अगर हमारा बेहतरीन नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो खादिमों को मारते हैं। ये खादिम बेचारे इस माशरे के कमजोर तरीन लोग हैं, आप खिदमत करते हैं, उनको हक देने की बजाय वो आपकी मदद करते हैं, उनको मारते हैं, गाली देते हैं। अगर जानवर की वजह से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक औरत एक बिल्ली की वजह से जहन्नुम में गई, बिल्ली जानवर है, एक मुसलमान औरत जहन्नुम में जाती है बिल्ली की वजह से, कलमा पढ़ने वाली मुसलमान नमाजी औरत, वजह क्या थी कि बिल्ली को कैद कर दिया, बिल्ली को कैद कर दिया, ना खाने को कुछ दिया, ना पीने को कुछ दिया, और ना उसे आजाद किया कि वो खाए और पिए, वो भूखी और प्यासी मर गई। और आजकल खबरें आती हैं कि फुलां सरदार ने एक शख्स को या दो लोग तीन लोगों को एक घराने को कैद करके रखे 12 साल से। सुनिए खबरें कि नहीं, अरे 12 साल कैद करके रखा है इंसान को, मुसलमान को, खादिम है ये, खादिम है इन मजलूमों पर, इन बेचारे लोगों पर, कमजोर लोगों पर जुल्म करते हैं। वो वक्त आने वाला है अल्लाह की कसम, कयामत के दिन वक्त आएगा, अगर ऐसे जालिम आज तौबा नहीं करते, कयामत के दिन मैदान महशर में ये चींटियों की तरह इनका साइज होगा, और मजलूम उनको अपने पंख के नीचे से रौंदेंगे। और एक वक्त आएगा हिसाब के वक्त, ये जालिम आएगा और मजलूम दामन पकड़ के आएंगे, इसका दामन पकड़ा होगा, और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि जहन्नम के ईंधन में नहीं धकेलेंगे उसे। खादिमों पर जुल्म करते हैं। बहरहाल जुल्म की और भी सूरतें हैं, मैं इक्तिफा करता हूं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं इल्म साल इल्म नाफ़ अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए, कुरान और सुन्नत पर चलने की, सलफ सालेहीन के रोशन मनहज पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें जुल्म से बचाए, हमारे माशरे को जुल्म से बचाए, हमें नरम बना दे, हमारे दिलों को नरम बना दे, हमारी जिंदगी को नरम बना दे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسماء الله الحسنى کے شرح کے درس جاری ہے. آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام کی شرح کرتے ہیں، العلی، الاعلى اور المتعال. یہ تین اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، العلی، الاعلى اور المتعال. ان تینوں ناموں کی دلیل، العلی کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ